करै नर से नार होए उतर तू कहियत की आद पवानी मुक्त की परिया खांच बनी गुरमत राम नाम गहो मीता प्रणवै नामा एहो कह हां।

कहो गोर सतगुरु गोर सतगुरु सब तन कहो सब तन कहो गोर सतगुरु गोर सतगुरु।

कबीर एहो तन जाएगा, कब ने मार गलाए, कै संगत कर साधकी, कै हर के गुण गाए। कबीर मरता मरता जग मुआ, मर बिन जाने कोए, ऐसे मरने जो मरे बहर न मर ना होए। कबीर मानस जन दलभ है, होए न बारे बार, जो मन पर पाके पुहे गिरे बहर न लागे डारा। कबीर तू कबीरा तू ही कबीर तू, तेरो नाओ कबीर, राम रतन तब पाइये, जो पहले तजे शरीरा। कबीर चंख न चंखिए, तुमरो केहो ना होए, कर्म करीम जो कर रहे मेट न साके कोए। कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके न कोए, राम कसौटी सौ सहे, जो मर जीवा होए। कबीर उज्जल परहर कापरे, पान सपारी खाए, एक सहर के नाम बिन बादे जम पर जाए। कबीर बेड़ा जर्जरा, फूटे छिक हजार, हरुए हरुए तिर गए, डूबे जिन सिर पहार। कबीर हड जरे ज्यो डाकरे, केस जरे ज्यो कास, एहो जग जरता देख के प्यो कबीर उदास। कबीर गर्व ना कीजिए, चाम लपेटे आंड, है गैबर उपर छतर तारा, ते फुन तरनी गाड। कबीर गर्व ना कीजिए, उच्चा देख वास, आज काल पुए लेटना उपर जामे कहास। कबीर गर्व ना कीजिए, रंकन हसीए कोए, अजू सुनाओ समुद्र में क्या जानो क्या होए। कबीर गर्व ना कीजिए, देही देख सरंग, आज काल तज जाओगे ज्यों कंचरी पे अंग। कबीर लूटना है तो लूट ले, राम नाम है लूटा, फिर पाछे पछताओगे प्राण जाएंगे छूटा। कबीर ऐसा कोई ना जन्मयो, अपने कर लावे आग, पंचो लरका जार के रहे राम लिवलाग। को है लड़का बेचे, लड़की बेचे कोए, सांझा करे कबीर स्यों, हर संग भंजन करे। कबीरे उचितावनी, मत सहसा रह जाए, पाचे भोग जो भोग वै, तिनको गुड़ लै खाए। कबीर मैं जान्यो पढ़वो पलो, पढ़वे स्यों पल जोगा, भगत न चाडू राम की, पावे निंदो लोगा। कबीर लोग के निंदे बपड़ा, जे मन नाही ज्ञान, राम कबीरा रब रहे अवरत जे सब काम। कबीर परदेसी के घागरे, चौं दिस लागी आग, खिंता जल कोयला पही, धागे आंच न लाग। कबीर खिंता जल कोयला पही, खापर फूटम फूटा, जोगी बपड़ा खेलियो आसन रही बिभूता। कबीर थोरे जल माछली, चीवर में लियो जाल, ए टोकने ना छुट से फिर स कर समुंद समाल। कबीर समुंद न छोड़िए, जो अतखारो होए, पोखर पोखर ढूंढ।

कबीर गंगा तीर जो घर करे पीवे निर्मल नीरा, बिन हर भगत न मुक्त होए इउं कह रमे कबीरा। कबीर मन निर्मल पिया जैसा गंगा नीरा, पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीरा। कबीर हर दी पी अरे चूना उजल पहाए, राम स्नेही तो मिले दोनों बर्तन बर्न गवाए। कबीर हर दी पी तन हरे चून चिन्ह न रहाए, बलिहारी ए प्रीत को जय जात बर्न कुल जाए। कबीर मुक्त द्वारा सौंकरा राई दसमे पहाए, मन तो मैगल होए रेओ निकसो क्यों ले जाए। कबीर ऐसा सतगुर जे मिले तूठा करे पस

मुक्त द्वारा मोकला सहजे आबो जाओ। कबीर ना मोहे शान ना चापरे, ना मोहे कर नहीं गाओ। मत हर पूछे कौन है मेरे जात ना नाओ। कबीर मोहे मरने का चाओ है, मरो तार के द्वारा। मत हर पूछे कौन है परा हमारे बारा। कबीर ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीरा। क्या जानो कुछ कर हर किया प्यो कबीर कबीरा। कबीर सुपने हूँ बढ़ाए के, जे मुख निकसे राम। ताके पक्की पाहने मेरे तन को चाम। कबीर माटी के हम पुतरे, मांस राखे उठाओ। चार दिवस के पौने बड़ बड़ रूंदे ठाओ। कबीर मेदी कर कालिया आपसाई पिसाए। तैसे बात न पूछिया कभू न लाई पाए। कबीर जय दर आवत जाते।

भरियो गुण की लहर च भाका, जब देखियो जे बेड़ा झर जरा तब उतर प्रियो हूँ पर का। कबीर पापी भगत न पावई हर पूजा ना सहाय, मखे चंदन पर हरे जय सुगंध बिगंध ना तै, माखी चंदन पर हरे जय बिगंध तै जाय। कबीर वैद मुआ रोगी मुआ, मुआ सब संसार एक कबीरा नाम हुआ, जे नाही रोवन हार। कबीर राम ना त्यायो खू मोटी लागी खोरा, काया हांडी काट के ना हो चरे बहोरा। कबीर ऐसी होए परे मन को भावत कीना, मरने ते क्या डरपना जब हाथ सुधौरा लीना। कबीर रस को गाडो चूसिए गुण को मरिए रोए, अवगण यारे मानसे भलो न कहे कोए। कबीर गागर जल परी आज काल जहे फूटा, गुरजो न चेते आपनो अदमा।

आए प्रगट भय निधान सब जब पूछे धर्म राय कबीर हर का सिमरन छाड़ के पाल्यो बहुत कटंब धंधा करता रह गया पाई रिया ना बांदा कबीर हर का सिमरन छाड़ के रात जगावन जाए सरपन हो के उतरे जाए अपने खाए कबीर हर का सिमरन छाड़ के।

कबीर निर्मल बूंद आकाश की, पर गई भूम बिकार, बिन संग त्यों मानई होए गई पटसार। कबीर निर्मल बूंद आकाश की, लीनी भूम मिलाए, अनक सियाने पच गए ना निरवारी जाए। कबीर हज काबे हो जाए था, आगे मिलया खुदाए, साई मुस्यों लर फरिया, तुझे कनी फरमाई गाए। कबीर हब काजे हुए हुए गया, केती बार कबीर, साई मुझ में क्या खता।

कबीरा हमरा को नहीं हम किसू के नाहे, जिन्ने रचन रचाया तसी माहे समाहे। कबीर की चढ़े आटा गिर परया, किसु न आयो हाथ। पीसत पीसत चाबया सोई निबया साथ, कबीर मन जाने सब बात। जानत ही औगण करै काहे की कुशलात, हाथ दीप कुएं परै। कबीर लागी प्री

आए। कबीर जौ तौ साध ब्रह्म की शीश काट कर गोए, खेलत खेलत हाल कर जो किछु होए सो होए। कबीर जौ तौ साध ब्रह्म की पाके सेती खेल, काची सरसों पेल कै।

नति तोति संभवे सुतीय न चेंद वृद्धा रही जो बेड़ी दी गई कतूरी गंध जो बन जाते ना डरा जिस प्रीत न जाए।

आए जित पिंजरा मेरा सौ वसै मासना ते दू काए फरीदा गौर निमाणी छड़क करे न करे आ करे आओ फरीदा गौर निमाणी छड़ करे।

आई जह पेजे तह जाओ ए बड तन होर को नहीं पाई जे बड सच्चा नाओ सदा सच्चे के गुण गावा पाई सदा सच्चे कै संग रहाओ पैनण गुण चंगियाइया पाई अपनी पत के साध आपे खाए।

नदर करे जस्यापणी सो चले सतगुर पाए सतगुर का दर्शन सफल है जो इच्छा सो फल पाए जिन्हें सतगुर मने आओ तन के लागो पाए नानक ताका दास।

मनि आई हृदय कमल पर गासे आ ज्योति जोत मलाई नानक सतगुर तिन को मेलियोन जिन तुर महतक भाग लिखाई अंदर तिसना अग है मन मख भुख न जाए मोह कुटाम साहब कूड़ है कूड़ रहा लपटाई।

संत प्यारी हो अकथ की करह कहानी अकथ केरी कित द्वारे पाई है। तन मन तन सब सौंप गुर को हुक्म ने पाइए हुक्म न्यो गुरु के रागा हो सच्ची वाणी। कहे नानक सुनो संतो कथियो अकथ कहानी। ए मन चंचला

केरी बिख मार्ग चलना, लभ लोभ हंकार तज तृष्णा, बहुत नाही बोलना खन्यो तिखी, बालो निकी ए तुमारग जाना, गुर प्रसादी जिनी आवत जार, वासना समाणी कह नानक चल भगता, युग हो जुग नराली, ज्यो तू चलाहे ते चलहे स्वामी, और क्या जाना गुण तेरे, जिब तू चलाहे ते वह चलहे, जिना मार्ग पावहे, कर कृपा जिना मिलाहे, श्री हर हर सदा ते आवहे, जिसनों कथा सुनाहे अपनी से गुरुद्वारे सुख पावहे, कह नानक सच्चे साहब ज्यो पावे ते वे चलावहे, इहो सोहला शब्द सुहावा, शब्द सुहावा सदा सोहला, सतगुरु सुनाया इहो तिन कै मन वसिया, जिन तुरों लिखिया आया एक फिर एक नेरे, करे गल्ला गली करे ना पाया, कह नानक शब्द सोहला सतगुरु सुनाया, पवित होए से जना जिनी हर ध्याया, हर ध्याया पवित होए गुरमुख जिनी ध्याया, पवित माता पिता कुटुंब सहत सिंह पवित।

हो निर्मल सतगुर ते कानी कमाणी कूड़की सोए पहुंचे नाई मन सा सस माणी जन्म रतन जनी खटिया भले से बन जा रे कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रह गुर नाले जे को सिख गुरु से सनमुख होवे ता सनमुख से कोई जीव रहे गुर नाले गुर के जन हृदय त्याई अंतर आत्मे संभाले आप छड़ सदा रहे पर गुर बिना न जाने कोए कहे नानक सुनो संतो सो सिख सनमुख होए जे को गुर ते वे मुख होवै बिन सतगुर मुक्त न पावै पावे मुक्त न होर थै कोई पुछो बबेकियां जाए अनेक जूनी भरम आवे बिन सतगुर मुक्त न पाए।

सतगुरु बिना और कच्ची है बाणी, बाणी त कच्ची सतगुरु भज हो, होर कच्ची बाणी कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख बखाणी। हर नित करे रसना कहया कछु न जानी, चित जिन कहर लया माया बोलन पैर बाणी कह नानक सतगुरु भज हो, होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन हीरे जित जड़ाओ, शब्द रतन जित मन लागा एहो आसमाओ, सब छेती मन मिलिया।

साचै सुनै नो पठाए श्री लाए सुनो सतवाणी जित सुनी मंतन हरिया हो रसना रस माणी सच लख बडाणी।

द्वारे प्रगट किए दसवा गुप्त रखाया, गुरुद्वारे लाए पावन एक ना दसवा द्वार दिखाया, तह नेक रूप नाव नव तेह दांत न जाही पाया, कह नान खर प्यारे जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन बजाया, एहो साचा सोहला साचे कर गाव हो, गाव हो ता सोहला कर साचे, जिथे सदा सच।

साध की महिमा बेद न जानै, जेता सुनै तीता बखियानै। साध की उपमा तेहु गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा उचते उची, साध की शोभा मुचते मुची। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभेद ना पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखा एक सबन कोय। नानके लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए, अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप। जैसे जल में कमल लेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख। जैसे सूर सर्प कौ सुख, ब्रह्म ज्ञानी कै दृश्य मान। जैसे राज रंग को लागे तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी कै तीर जेक। जो बसदा को खोद को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी कह गुनाऊ। नानक जो पाप का सह सुभाऊ, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला। जैसे मैं न लागै जला, ब्रह्म ज्ञानी कह मन होय परगास। जैसे धरि ऊपर आकाश,

सर में पेखै भगवान। निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार, नानको परसु सगल निस्तार अष्टपदी। मिथ्या नाही रसना परसु, मन में प्रीत निरंजन दर्शु। परत्रि रूप न पेखै नेतरु, साध की टहल समसंग हित। करना सुनै काहु की निंदा, सब ते जानै आपस को मंदा। गुर प्रसाद विख्या पर हरै, मन की बासना मनते टरै। इंद्रिय जित पांच दोख ते रह तू, नानक कोट मध्य को ऐसा। परसु बैसनो सोज सुपर सो प्रसन्न, मिशन की माया ते हुए पैन। कर्म करत हुए नि कर्म, तिस बैसनो का निर्मल धर्म। काहु फल की इच्छा नहीं बाचाए, केवल भगत कीर्तन संग राचाए। मंत्रनांतर सिमरन गोपाल, सब उपरोत कृपाल। आप दृढ़ अवर नाम जपावै, नानको बैसनो परम गत पावै। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग। मंति बिनसा सगला भरम, कर पूजा सगल पार ब्रह्म। साध संग पापा मल खोवै, भगवती की मत उत्तम होवै। भगवंत की टहल करै नित नीत, मंत नरप बिशन प्रीत। हर की चरण हृदय बसावै, नानका सब भगवती भगवंत को पावै। सो पंडित जो मन पर बुद्धै, राम नाम आत्मै सोधै। राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित का उपदी जग जीवर। की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जोन ना आवै। वीत प्राण सिमरत बूझै मूल, सुख मैं जानै अस्थूल। चौवरना को दे उपदेशु, नानक उस पंडित कहु सदा देशु। बीज मंत्र सर्व कु गया, नु चौवरना में जपै कु नाम। जो जो जपै तसकी गत होए, साध संग पावै जन कोई। कर कृपा अंतर उतारै, पास प्रीत मुग्ध पात्र कौ तारै। सर्व रूप का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम। काहु जुगत के तै ना पाइय धर्म, नानक तस मिलै स लिखिया धुर कर्म। जिसका मानु पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास। आत्म राम सनदरी आया दास, संतन पाए तन पाया। सदा निकट निकट हर जान, सुदास दरगह परवान। अपनी दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सूझी परै। सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक राम दास। प्रभु की आज्ञा आत्म हितावह, जीवन मुख सुखावह। तैसा अर्थ तैसा सोगा, सदा आनंद है नहीं वियोग। ऐसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत ऐसी वह खाटी। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान। जो वरता ऐसा ही जुगत, नानको पुर कहिए जीवन मुक्त। पार ब्रह्म की सगली ठाऊ, जे जद घर राखै तैसा तन नाऊ। आपे करण करा बंजोग, प्रभाव सोई फन होग। पसवी वापु अंत तरंगू, लखी न जाई पार ब्रह्म के रंग।

मैं तूला लाद खेप संत संचाल अवर त्याग विख्या जंजाल तन तन कहे सब कोई मुख उजला दरगा सोई हे व्यापार विरला व्यापारे नानक तां के सतवर हारे चरण साधके तोय तोय पियो और प्रसाद को अपना जियो साधक दूर करो स्नान साधु पर जाइए कुरबान साध सेवा भागी पाई है साध संग कीर्तन गाई है अनक विघन ते साधु राखे हर गुण गाए अमृत रस चाख है ऊट गही संत दरियाया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक कौ जी वालन हार भूखे को देवत आधार सरवण दान जा की दृष्टि माए पूर्व लिखे का लेना पाए साव के तिसके करने जोग तिस बरन दूसर हुआ ना होगा जाप जन सदा सदा दिन रैनी सब तेज निर्मले करने कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सोजन निर्मल किया जाके मन गुरु की प्रतीत तिस जन आवे हर प्रपचीत भगत भगत सुनिया तै लोहे जाके हृदय कोहे सच करनी सच ता की रहत सच हृदय सत मुकैत सच ही दे सच आयाकार सच वरते सच अपसार पार ब्रह्म जन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता सलोक रूप नारेख न रंग किश त्रिगुण ते प्रभु पिन तिसे बुझाए नानक जिस होवै सो प्रसन्न अष्टपदी अविनाशी प्रभु मन में राख मान की तू पी त्याग तिसते परे नाही किश कोई सब निरंतर को सोए आपे बिना पे दाना गहर कबीर की सजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद सातरे की चरनी पाओ नानक के मन ए नाओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होगा हरन परन जा का नेत्र फोर है तिसका मंत्र न जाने होर है अनंत रूप मंगल सत जा कै सर्व थोक सुनी करता के राज में जा राज जोग में जोगी तप में तपिसा गृहस्थ में भोगी त्याय त्याय भक्त सुख पाया नानक तिस पुर का कने अंत न पाया जाकी लीला कीमत ना है सकल देव हारे अवगा है पिता का जन्म कह जाने पूत सगल पुरोई अपने सूता समुत ज्ञान त्या जन दे जनदास नाम त्यावे से ते गुण में जाकू परमाए जन्म रे फिरावे जाए ऊच नीच तिसके अस्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पे करे करंग नाना विद कीनु विस्तार प्रभे अविनाशी अकंकार नाना चलित करे खन माहे पूरे हो पूर सब ठाए नाना विद कर बणत बनाही अपनी कीमत आपे पाही साव कर तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवे नान करनाओ नामक तारे सगले जंत नामक तारे खन ब्रह्मंड नामक तारे सुमित विद प्राण नामक तारे सुनन ज्ञान ध्यान नामक तारे आकाश पाताल नामक तारे सगले आकार नामक तारे उरिय सब पवन नामक संग उदने सुन सरवन कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनगत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रदान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख समय समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मले जिसे बुझाए तिसे सब पले सत नाम प्रभु का सुखदाई बसवास सत नानक गुरते पाए सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जा के हृदय प्रवेश है सत निरत बुझे जे कोई नाम जब ताकी गत हो आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिस किसी सो करने हार अवरना बुझ करत विचार कते कीमत ना जानी किया नान जुत पावे सो वरतिया विस्मन विस्म पै विस्माद जिन बुझ जत साया स्वाद प्रभ के रंग राच दन रह गुर के वचन पदार्थ लै तू दाते दुख काट नहार जन के संग तरे संसार जन का सेव सुवड पागी जन के संग एक लागी गुण गोबिंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक हो से पे सच अष्टपदे चारण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पे कनहार नाम सत सत्यावनहार आप सत सत सवतारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभुक्ता सुरत सत सत जर सुता भोजनहार को सब होए नानक सत सत प्रभ सोहे सत स्वरूप हृदय जन मानिया करन कराव दिन मूल बिछानिया जा कर दे विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया पैते निरपो हे बसाना जिस देव जद समय समाना वस्त माए ने वस्त कडाई ताको पीने भिरना कहना जाई बूझे भोजनहार भवेक नारायण मिले नानकेक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर का सेवक मन प्रतीत ठाकुर का सेवक निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभ का सेवक नाम के रंग सेवक प्रभ पालन हारा सेवकी राके निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभ धारे
ਨਾਲ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਮਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਨਕਾ ਪਰਦਾ ਢੱਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕੀ ਸਰ ਪਰ ਰੱਖੈ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੁਦੇ ਵਡਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕੂ ਨਾਮ ਜਪਾਈ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕੀ ਆਪਤ ਰੱਖੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗਤ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਖੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕੋ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕੂ ਤੇ ਉੱਚੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਸੋ ਸੇਵਕ ਦਾ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਨਿੱਕੀ ਕੀਰੀ ਮੈਂ ਕਲ ਰੱਖੇ ਪਸਮ ਕਰੇ ਲਸਕਰ ਕੋਟ ਲਾਕੈ। ਜਿਸਕਾ ਸਾਸਨਾ ਕਾਟ ਤੋ ਆਪ ਤਾ ਕੋ ਰਾਖ ਦੇ ਕਰੇ ਹਾਥ। ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬਪਾਤ ਤਿਸਕੈ ਕਰਤਾ ਬਿਰਥੇ ਜਾਤ। ਮਾਰੇ ਨਾ ਰਾਖੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਏ। ਕਾਹੇ ਸੋਚ ਕਰੀ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਬ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਬਣਾਣੀ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਏ ਪੀਏ ਮਰਤੇ ਮਨ ਤਨ ਤ੍ਰਪੀਐ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਤਿਸ ਕਿਸ ਅਵਰ ਨਾਈ ਦਿਸ਼ਟਾਇਆ। ਨਾਮ ਤਨ ਨਾਮ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾਮ ਸੁਕਰ ਨਾਮ ਕਾ ਸੰਗ। ਨਾਮ ਰਸ ਜੋ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੈ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਨੈ। ਉੜਤ ਪੈਰ ਸੁਪਤ ਨਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇ ਸਦਕਾਮ। ਬੋਹਲੋ ਜਸ ਦੇ ਬਾਦ ਨਿਰਾਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੀ ਨੀ ਦਾਤ। ਕਰੇ ਭਗਤ ਆਤਮਕ ਚਾਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸੁਰੇ ਸਮਾਏ। ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਨੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਉ ਪਛਾਨੈ। ਇਸਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹੋਨ ਬਖਾਨੋ ਤੁਸ ਕਾ ਗੁਣ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਨੋ। ਆਠ ਪੈਰ ਪ੍ਰਭ ਸੇਹ ਜੋਰੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਪੂਰੈ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਓਟ ਲਿਹੇ ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨ ਜਨ ਦੇ। ਜਿਨ ਜਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਾਤਾ ਸੋ ਜਨ ਸਰਬ

तबे सब सिखण को हुक्म है गुरु गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुराक जो प्रभु को मिलबो चाहे राज करेगा खालसा के फुआर हुए सा मिलेंगे बच्चे

जाए हमें मैल ना जाए। मन मेरे शरण आवे ता निर्मल होए, मन मुख हर हर कर थके मैल ना सकी तोए।

जिस प्यारे सोने हो तिस आके मर चलिए मन तन आगे राख के उबी से करे सतगुर आगे शीश पेट देओ जे सतगुर सच पावे जे सतगुर सच पावे आपे दया करो प्रभु दाते नानक अंक समावे जिस प्यारे सियाने हो तिसे आगे मर चलिए त्रिग जीवन संसार ताके पाछे जीवन हमारे एहे कृपा कीजे हमारे।

सोचो बन तन पछताने गया सोजो बन गया सोजो बन तन पछताने गया सोजो बन तन प

बिन दर्शन कैसे रहो सनेही, हाँ दोहागन खरी रंजानी, सब कंत है रतिया मैं दोहागन कित, मैं तन योगन एतड़े खसम न फेर, मैं तन योगन एतड़े खसम न फेर।

मैं छट गवाया। मित्र प्यारा नानक जी मैं छट गवाया, रंग कसुंभ फुली तो सजन की मैं की मन पादी, हों तुद बिन अड न लह दे। नानक जी नानक

निज कर ताड़ी लाई शुद्ध रस नाम मारस मीठा शुद्ध रस नाम मारस मीठा निज कर ताड़ी।

0: अगली जो दूना खाए खसमै करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजो गवाए अगला मोए मोए पाना खाए जिस दा दिता खावना
1: दिश भई है शाबाश नानक हुक्म ना जा।